0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
0: नहीं
1: दीदी, मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
5: क्लब मिर्ची।

मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वीकेंड पे किसी को अपना बनाना है, सिंपल फूड ऑर्डर कर दो यार, म्यूजिक लगाओ और उनका फेवरेट डिजर्ट सीक्रेटली सेव कर लो। रोमांस सॉल्व्ड।

वीकेंड हग्स और फ्री थेरेपी क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। और अगर इसी हग के बाद कोई बोले चलो पार्टी का बिल स्प्लिट करते हैं तो रोमांस वही पे खत्म। सिफारिश तो जरूरी है लेकिन फॉर नाउ सिर्फ खुद के लिए ही सिफारिश करो यार।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

back to Club Mirchi. DJ Richard and Mirchi और योंते का एक साथ. तो वीकेंड पे सिर्फ एक ही दुआ है, मंडे दूर रहे, बैटरी फुल रहे और पार्टी में वो दोस्त ना आए जो हर गाने पे डीजे बन जाता है. या अली, तोड़ दुश्मन की गली.

हाँ, सब चिल्ड्रन ही तो बन जाते हैं वीकेंड पे क्लब मिर्ची टीचर रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बच्चों को घर वाले सुलाते हैं, हम खुद संडे को बेड से नहीं उठते। खैरियत रहती है क्या? चलो लेट्स जैम टुगेदर।

0: वीकेंड में दिल किसी के और जा रहा है तो जाने दो यार, बस पहले कंफर्म कर लो कि वो भी तुम्हारी ओर आना चाहती है कि नहीं।
1: लव मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंटिका बेबी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi Bioscope. Saad Jeetu Raj. Only on Mirchi. It's hot.
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतुराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतुराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतुराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: Only on Mirchi, it's hot.
3: Ladies and gentlemen.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सैया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

अपनी बैंक बैलेंस को गुप्त ही रखिए। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल टेकआउट। प्यार तो मुश्किल है ही, और वीकेंड पे होटल रूम सर्विस भी। मेन्यू देखो, प्राइसेस देखो, फिर मैगी ऑर्डर करके सेल्फ रिस्पेक्ट सेव कर लो यार।

मिर्ची मजीज है रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंते का वीकेंड पार्टी का एक स्टेज होता है जब कोई म्यूजिक समझता ही नहीं, स्टेप्स समझता ही नहीं, फिर भी सेंटर में जाके जमाल कुदू कर रहा होता है, तो गाना ही एंजॉय कर लेते हैं।

0: कुछ ना कुछ जरूर जाता है, एनर्जी, वॉइस, कभी कभी डिग्निटी. ले गई ले गई. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टिका.
1: डोंट इवन बदर एक्सप्लेन, ही सेज, cuz आई डोंट वांट टू हियर इट. जस्ट गेट यस.

वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वीकेंड पार्टी के बाद संडे को एक ही सवाल पूछना है, वो भी मिरर को, हु इज द मैन इन द मिरर, क्योंकि हुलिया ही बदल जाता है हमारा, है कि नहीं।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट.
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो.
0: Club Mirchi.

वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। अब वीकेंड में ओ माही वाइब्स तो ऑफ कोर्स मिलेगी। रोमांस हो या ब्रोमांस, बस कोई तो हो जो बोले चल पार्टी करते हैं।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi Bioscope. Saad Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई, मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतुराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतुराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @MirchiJeeturaj। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: जीतुराज। Only on Mirchi, it's hot.

अब मिर्ची मिर्ची जन मिर्ची और मिर्ची ओयों दिखा। वेलकम बैक पीपल। वीकेंड आते ही शेर खुल गए। फ्राइडे तक जो ऑफिस में गुड मॉर्निंग सर बोल रहे थे, आज डांस फ्लोर पे बोलेंगे हेलो मूव क्लियर।

डांस बसंती, वीकेंड पे डांसिंग का कोई रूल नहीं, स्टेप्स गलत हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं। एम्बैरेसमेंट इज ऑल्सो अ ग्रुप एक्टिविटी टुडे ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन.

और म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पार्टी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची डेज विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योम्तिका।

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आयोंतिका.

0: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
4: ऑन अ राइड।

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सैया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वीकेंड पे किसी को अपना बनाना है, सिंपल फूड ऑर्डर कर दो यार, म्यूजिक लगाओ और उनका फेवरेट डिजर्ट सीक्रेटली सेव कर लो। रोमांस सॉल्व्ड।

वीकेंड हग्स आर फ्री थेरेपी क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। और अगर इसी हग के बाद कोई बोले चलो पार्टी का बिल स्प्लिट करते हैं तो रोमांस वहीं पे खत्म। सिफारिश तो जरूरी है लेकिन फॉर नाउ सिर्फ खुद के लिए ही सिफारिश करो यार।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi Bioscope. Saad Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतुराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतुराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @MirchiJeeturaj। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: साथ जीतुराज। Only on Mirchi, it's hot.

डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आयोन टेक अस सॉर्टिंग योर वीकेंड. फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो, फैमिली के साथ चिल करो, या फिर खुद के साथ डेट पे जाओ, बिकॉज हैप्पीनेस को कंपनी की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा म्यूजिक और जीरो जजमेंट चाहिए. दैट इज क्लब मिर्ची. हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड एंड हियर्स द साइन ऑफ ट्रैक. इट्स कॉल्ड स्वीट डिस्पोजिशन. टाटा.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन. वी आर गोना गो.

हेलो पीपल, वेलकम टू क्लब मिर्ची। वीकेंड आ गया और वीकेंड का मतलब प्लान्स। अब किसी के प्लान्स में गोवा है, किसी के प्लान्स में नाइट क्लब, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ वीकेंड पे क्लब मिर्ची सुनते हैं विथ डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। क्योंकि वीकेंड के लिए भाई क्राउड जरूरी नहीं, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ी मूड और जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ फ्यू आवर्स बस। So let's start this episode with our favorite Ek Din Teri Raho Mein. Let's go!

नहीं नहीं, वीकेंड का प्लान पानी पानी नहीं करेंगे, क्लब मिर्ची सुनेंगे और साथ में झूमेंगे। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर।

वीकेंड में दो चीजें आसमानी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस और हील्स। बाकी बिल जमी पर ही रहे, वरना मंडे का मूड खराब हो जाएगा। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन यून दिखा।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.

वीकेंड क्रश का भी अलग ही नशा है। फ्राइडे को लगता है दिस कुड बी समथिंग, संडे तक रियलिटी चेक मिल ही जाता है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। वेलकम बैक।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: मिर्ची साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतुराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतुराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतुराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: जीतुराज only on Mirchi, it's hot.
3: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are...

क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वीकेंड पार्टी के बीच में एक मोमेंट आता है जब डीजे वॉल्यूम बढ़ाता है और वॉलेट क्वाइटली प्रेयर करता है, मौला मेरे मौला यूपीआई बैलेंस बचाना। क्लब

जरूरी है। क्लब मिर्ची मिर्ची रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, बस वॉलेट के साथ मत करना यार, कल सुबह बैंक स्टेटमेंट देख के बेला चाओ खुद बोलना पड़ेगा।

मिर्ची और यौन टीका आपके साथ। वीकेंड रोमांस का भी अपना ही प्रेशर है। कपल्स को डेट प्लान करना है, सिंगल्स को प्रिटेंड करना है दैट दे लव बीइंग सिंगल, और सबको इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी है। यही तो है सोशल मीडिया, इश्क जैसा कुछ।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन.

मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन अंतिका। वीकेंड पार्टी के बीच में एक मोमेंट आता है जब डीजे वॉल्यूम बढ़ाता है और वॉलेट क्वाइटली प्रेयर करता है, मौला मेरे मौला यूपीआई बैलेंस बचाना।

इतनी जरूरी है एकलव मिर्ची मिर्ची रिचर्ड मिर्ची और यौन टिका, बस वॉलेट के साथ मत करना यार, कल सुबह बैंक स्टेटमेंट देख के बेला चाओ खुद बोलना पड़ेगा।

Welcome back, party people. Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi or Yontika. Weekend pe kisi ko apna banana hai? Simple. फूड ऑर्डर कर दो यार, म्यूजिक लगाओ और उनका फेवरेट डिजर्ट सीक्रेटली सेव कर लो. रोमांस सॉल्व्ड.

वीकेंड हग्स और फ्री थेरेपी क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। और अगर इसी हग के बाद कोई बोले चलो पार्टी का बिल स्प्लिट करते हैं तो रोमांस वहीं पे खत्म। सिफारिश तो जरूरी है लेकिन फॉर नाउ सिर्फ खुद के लिए ही सिफारिश करो यार।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सरिया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका।

टू क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एक साथ। वीकेंड पे सिर्फ एक ही दुआ है, मंडे दूर रहे, बैटरी फुल रहे और पार्टी में वो दोस्त ना आए जो हर गाने पे डीजे बन जाता है। या अली, तोड़ दुश्मन की गली।

हाँ हाँ सब चिल्ड्रन ही तो बन जाते हैं वीकेंड पे क्लब मिर्ची रिचर्ड मिर्ची ओंतिका। डिफरेंस इतना है कि बच्चों को घर वाले सुलाते हैं, हम खुद संडे को बेड से नहीं उठते। खैरियत रहती है क्या? चलो लेट्स जैम टुगेदर।

0: कल किसी के और जा रहा है तो जाने दो यार, बस पहले कंफर्म कर लो कि वो भी तुम्हारी ओर आना चाहती है कि नहीं।
1: क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंटिका बेबी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi Bioscope. Saad Jeetu Raj. Only on Mirchi. It's hot.
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतुराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतुराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए एट मिर्ची जीतुराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: साथ जीतुराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो।

अपनी बैंक बैलेंस को गुप्त ही रखिए। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल टिकाओ। प्यार तो मुश्किल है ही और वीकेंड पे होटल रूम सर्विस भी। मेन्यू देखो, प्राइसेस देखो, फिर मैगी ऑर्डर करके सेल्फ रिस्पेक्ट सेव कर लो यार।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर

वेलकम बैक पार्टी पीपल, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। वीकेंड पार्टी का एक स्टेज होता है जब कोई म्यूजिक समझता ही नहीं, स्टेप्स समझता ही नहीं, फिर भी सेंटर में जाके जमाल कुदू कर रहा होता है, तो गाना ही एंजॉय कर लेते हैं।

0: कुछ ना कुछ जरूर जाता है, एनर्जी, वॉइस, कभी कभी डिग्निटी. ले गई ले गई. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टिका.
1: डोंट इवन बदर एक्सप्लेन, ही सेज, cuz आई डोंट वांट टू हियर इट. जस्ट गेट यस.

वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनतिका। वीकेंड पार्टी के बाद संडे को एक ही सवाल पूछना है, वो भी मिरर को, हु इज द मैन इन द मिरर, क्योंकि हुलिया ही बदल जाता है हमारा, है कि नहीं?

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go!

वेलकम बैक, क्लब मिर्ची जा रही है। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। अब वीकेंड में ओ माही वाइब्स तो ऑफ कोर्स मिलेगी। रोमांस हो या ब्रोमांस, बस कोई तो हो जो बोले चल पार्टी करते हैं।

सीरियसली टेस्ट जब फेवरेट सॉन्ग आए और आपका फ्रेंड बोले मैं डांस नहीं करता, 5 seconds later मकड़ा मोड ऑन एंड द फ्लोर इज गोइंग क्रेजी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल तोहार है, हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ।

0: जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जो धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमको बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतू राज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: साथ जीतू राज। Only on Mirchi, it's hot.

डांस बसंती, वीकेंड पे डांसिंग का कोई रूल नहीं, स्टेप्स गलत हो सकते, कॉन्फिडेंस नहीं। एम्बैरेसमेंट इज ऑल्सो अ ग्रुप एक्टिविटी टुडे ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन

वेलकम बैक पार्टी पीपल, क्लब मिर्ची जा रही है, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिक आपके साथ। वीकेंड सनी हो या रेनी, पार्टी मूड सनी तो होना ही है, तो लेट्स या सनी सनी टुगेदर।

म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पार्टी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची डेज विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योम्तिका।

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आई ऑन टिका.

0: What you got?
1: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
2: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
3: Only on Radio Mirchi. It's hot.
4: Ladies and gentlemen.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सैया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल ऑन टिका।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची बायोस्कोप साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: Only on Mirchi, it's hot.
3: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.
4: On a ride.
5: Club Mirchi.

वेलकम बैक बॉडी पीपल क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वीकेंड पे किसी को अपना बनाना है, सिंपल फूड ऑर्डर कर दो यार, म्यूजिक लगाओ और उनका फेवरेट डिजर्ट सीक्रेटली सेव कर लो। रोमांस सॉल्व्ड।

वीकेंड हग्स आर फ्री थेरेपी क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। और अगर इसी हग के बाद कोई बोले चलो पार्टी का बिल स्प्लिट करते हैं तो रोमांस वहीं पे खत्म। सिफारिश तो जरूरी है लेकिन फॉर नाउ सिर्फ खुद के लिए ही सिफारिश करो यार।

जय जय शिव शंकर, अज मूड है भयंकर।

प्यार होता कई बार है एंड वीकेंड पार्टी में क्रश भी कई बार हो ही जाता है। क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची और योंतिका, बस यही तो करते हैं हम तेरे प्यार में।

डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आयन टेक अस स्टार्टिंग योर वीकेंड. फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो, फैमिली के साथ चिल करो, या फिर खुद के साथ डेट पे जाओ, बिकॉज हैप्पीनेस को कंपनी की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा म्यूजिक और जीरो जजमेंट चाहिए. दैट इज क्लब मिर्ची. हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड एंड हियर्स द साइन ऑफ ट्रैक. इट्स कॉल्ड स्वीट डिस्पोजिशन. टाटा.

मेरे, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी। जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी

0: लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है, हम तो का ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज, समझे कि नहीं समझे, सही है।
1: जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।
1: हिट, हिट, हिट, हिट गाना। हिट

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया

शाम कर आई, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर। अंदर आया आदेश मान कर, चली राधिके ले माधव को, यमुना तट लीला निकुंज में, राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम हो।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जो धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन था उसकी शादी के फोटो बना दिया यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
0: नहीं
1: दीदी, मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
0: नहीं सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Baby, maybe hi, hi, call me, bar.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi. It's hot.
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @MirchiJeeturaj। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: द शो स्टार्ट्स इन 5, 4, 3, 2, 1, go।
3: कभी कभी इन चार्ट्स को एक सिंपल काउंटडाउन की तरह सुनना थोड़ा अनफेयर लगता है बिकॉज एवरी सॉन्ग ऑन दिस लिस्ट इज एक्चुअली अ टाइम मशीन। एक गाना आपको इस हफ्ते के बॉलीवुड में ले जाता है और अगला ही गाना बिना वार्निंग के 10 साल पीछे। कभी कोई पुरानी आवाज अचानक वापस आ जाती है, कभी एक नया सिंगर किसी पुराने एहसास को अपनी नई सांस दे देता है, और कभी एक ऐसा गाना जिसे हमने सोचा था कि हम भूल चुके हैं, पता चलता है वो तो बस दिल के किसी कोने में सो रहा था। शायद इसलिए बॉलीवुड को सिर्फ न्यू और ओल्ड में बांटना मुश्किल है। यहाँ पास्ट भी हर वीक नए सिरे से रिलीज होता है और फ्यूचर भी कभी किसी पुराने गाने की शक्ल में लौट आता है। और आज की मिर्ची टॉप 20 में वक्त थोड़ा ज्यादा ही उलझा हुआ है। कुछ आवाजें वापस आई हैं, कुछ पुराने रिश्ते वापस आए हैं और कुछ गाने अपनी जगह से कई बड़े हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते बॉलीवुड हमें किस जमाने में लेके जा रहा है। इट्स मी सुरेन, दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी आर स्टार्टिंग विद द गाना व्हिच इज ऑन नंबर 20, धुरंधर का आरी आरी
4: नंबर 20।

0: सुपरस्टार होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ऑडियंस जब आपकी एक इमेज बना लेती है तो उस इमेज के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। अक्षय कुमार ने अपने 35 साल के करियर में ये रिस्क बार बार लिया है। पहले एक्शन हीरो, देन रोमांटिक लीड, फिर कॉमेडी स्टार, उसके बाद पेट्रियोटिक फेस। उन्होंने खुद एक बार बताया था कि करियर के एक दौर में जब वो हर फिल्म में सिर्फ डिशुम डिशुम कर रहे थे, तो एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें एक अजीब सा डर लगा था।
1: एक दिन महसूस हुआ यार कि मैं सिर्फ एक बोरियत से आने लगी, और क्या मैं इसी के लिए बना हूँ कि सिर्फ एक्शन ही करना है मैंने, और कुछ नहीं करना, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। महसूस हुआ अपने अंदर ये घिन आने लगी यार कि मैं कुछ और भी तो कर सकता हूँ। बाकी सब एक्टरों को एक्टर बुलाते हैं, मुझे एक्शन का एक्शन बुलाते हैं, बस एक्शन का किंग कर लो, ये कर लो, इसको बुला लो, इसको स्टंट करवा लो, ये स्टंट मैन है। मैं यार करूंगा, आई थॉट इन माई माइंड आई हैव टू नाउ चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू टेक अ रिस्क।
0: अक्षय ने अपने चेहरे में एक इमेज की जेल को देखा। आज हैवान में अक्षय कुमार एक डार्क सीरियल किलर के रूप में उस इमेज से एक बार फिर भाग रहे हैं, और इसी डार्क वर्ल्ड के बीच प्रीतम नाय ने एक बहुत ही मेलोडिक कॉन्ट्रास्ट दिया है शान और सुखविंदर सिंह की आवाज में। मूवी में सैफ अली खान पर पिक्चराइज ये गाना एक पुराने दौर के सुकून को लौटा कर लाता है। नंबर 18 पर डेब्यूइंग दिस वीक, दिस इज रंगी आरा फ्रॉम हैवान। नंबर 8।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: मिल गया मैडम आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी याद आया है आपको?
1: नहीं नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर और घर के जो आपके पड़ोसी हैं हम उनसे नंबर आपका लिए हैं मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए जब दाएं मुड़े हैं ना हम मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम और बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के आप जब रिक्शा पे बैठी है ना मैं हम कसम खा रहे हैं हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए हम धुलाए भी नहीं है
1: क्या तुझे पागल लग
2: नहीं वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे
1: क्या कहना है
2: मैडम आई लव यू हम आपको देख के इतना मेरी बात है चारू चारू फोन मत रखना चारू फोन मत रखना हेलो चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था रिक्शा पे बैठ के गई थी मैंने तो मजाक किया तुम्हारा मुर्गा बना दिया आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार आई लव यू मैं रिक्शा नहीं चलाता चारू प्लीज बुरा मत मान यार थोड़ा सा नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 17

नंबर 17 पर है कहो तो फ्रॉम प्रेम कीटानो, अरमान मलिक की आवाज में। और अरमान को सुनते ही एक ईरा वापस आ जाता है जहन में, जब उनकी आवाज बॉलीवुड रोमांस की एक डिफॉल्ट सेटिंग हुआ करती थी। लेकिन आवाजों का सफर बहुत ही अजीब होता है। नंबर 16 पर है कॉकटेल 2 का माशूका, और कॉकटेल का नाम सुनते ही सीधा 2012 याद आ जाता है, जब इस फ्रेंचाइज ने एक बिल्कुल नए साउंड को इंट्रोड्यूस किया था। ये नेहा कक्कड़ की शुरुआत थी, और फिर 2015 से 2021 के बीच बॉलीवुड में एक ऐसा फेज आया जब नेहा की आवाज से बचना इम्पॉसिबल था। काला चश्मा, दिल पर, कर्मी, वेडिंग हो, पार्टी हो या क्लब एंथम, नेहा वाज एवरीवेयर। लेकिन इस कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल सच पता है क्या है? बॉलीवुड ने नेहा कक्कड़ को कभी ऑफिशियली रिटायर नहीं किया। नेहा ने 2021 के बाद, गर्मी के बाद, कई गाने गाए, लेकिन गर्मी वो आखिरी गाना था जिस लेवल पर कल्चरल सैचुरेशन पहुंच गई थी, जहां गाना आने से पहले ही लगता था ये तो नेहा का जमाना है।

एंड देन इंडस्ट्री का टेस्ट बदल गया, नए सिंगर्स आए, नया साउंड आया। और सच ये है कि ये इंडस्ट्री किसी आर्टिस्ट को तब तक ही सर पर बिठाती है जब तक वो करंट ट्रेंड की जरूरत है। तो आज जब नेहा के पुराने हिट चलते हैं तो नॉस्टैल्जिया किसी एक सिंगर का नहीं है, एक पूरे बॉलीवुड ईरा का होता है। इसलिए आज मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट उस दौर के नाम जहां हर जगह गूंजता था नेहा कक्कड़ का नाम, हियर इज आंख मारे फ्रॉम सिम्बा। टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 15.

पिया बॉलीवुड का सबसे फेवरेट रोमांटिक वर्ड, लेकिन कभी सोचा है कि रोजमर्रा की जिंदगी डेली लाइफ में हम इस वर्ड को बिल्कुल नहीं यूज करते। रियल लाइफ में अगर आप किसी को पिया बोल दोगे ना तो वो शायद शर्मा जाए या फिर आप पर शक करने लगे, लेकिन हिंदी सिनेमा ने पिया को कभी रिटायर नहीं होने दिया। 90s में फाल्गुनी पाठक ने इसे पॉप कल्चर का रिदम बना दिया था। Then 2000s में राहत फतेह अली खान ने इसे सूफी पोएट्री का रूप दे दिया।

बॉयफ्रेंड वर्ड प्रैक्टिकल है, पार्टनर वर्ड कॉर्पोरेट लगता है और लव वर्ड थोड़ा रिस्की है, लेकिन पिया में रोमांस के साथ एक अलग ही पोएट्री है। और आज इतने सालों बाद प्यार को शायद नाम से ज्यादा एक सवाल की जरूरत है, जब दिल चाहता है कि सामने वाला बिना कहे सब समझ जाए। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया की एक फिल्म आ रही है वन, लेकिन इसमें एक ऐसा गाना है विच ब्रिंग्स बैक द कोलैबोरेशन ऑफ सिद्धार्थ एंड जुबिन नौटियाल दैट गिव अस राता लंबिया इन शेरशाह एंड तुम ही आना इन मरजावा। इस बार दे ब्रिंगिंग अस अ गाना जहां फोकलोर और जज्बात मिलते हैं। नंबर 14 पर डेब्यू कर रहा है समझो ना फ्रॉम वन। नंबर 14।

0: नंबर 12 पर है साड़ी फ्रॉम धमाल 4, जहां लॉजिक को पॉकेट में रखकर बस मैडनेस एंजॉय करनी होती है। एंड बाय द वे दिस फिल्म इज नाउ ऑन OTT। लेकिन बॉलीवुड स्क्रीन पर पिछले कुछ वक्त में एक चीज बहुत स्ट्रॉन्गली फील हुई है। लार्ज स्केल रिलीजेस हुए, नए स्टार्स आए, लेकिन एक सुपरस्टार की फिजिकल एब्सेंस स्क्रीन पर बहुत भारी पड़ी, शाहरुख खान। 2023 में पठान, जवान और डंकी के बाद शाहरुख खान स्क्रीन से गायब हो गए, और तब रियलाइज होता है कि कुछ लोगों का ना होना भी कितना बड़ा इवेंट होता है। अब क्रिसमस पर किंग के साथ उनका वेट खत्म होने वाला है, लेकिन इतने बड़े स्टारडम के बाद शाहरुख खान खुद अपनी कामयाबी को कैसे देखते हैं?
1: मेरे को ना भगवान ने इतना दे दिया कि मेरी औकात से ज्यादा है। ये कोशिश करता रहता हूँ कि एट द एंड ऑफ माय लाइफ और करियर उतना काम कर जाऊँ कि मुझे लगे कि यार मैं डिजर्व करता था। मुझे बड़ी सरोज खान जी ने बोला था, एक बार मैं आया शूटिंग पे, तो हम 3 दिन शिफ्ट करते थे, तो मैं ऐसा आया, मैं यार थक गया, इतना काम है, मैं परेशान हो गया हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे थप्पड़ मारा है सब, क्योंकि बेटा एक बात याद रखना, एज एन आर्टिस्ट कभी ये मत कंप्लेन करना कि ज्यादा काम है, क्योंकि जब नहीं होता ना तो वो कंप्लेन बहुत बड़ी होती है। तो कभी मत कंप्लेन करना, बाकी हर चीज़ की कंप्लेन करो। सो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जितना हो जाए, जितना बन पड़े, और उससे भी ज्यादा कर सकूँ और खुशी से कर सकूँ।
0: शाहरुख खान ने यहाँ एक बहुत गहरी बात कही थी कि मुझे मेरी औकात से ज्यादा मिला है, अब कोशिश यही है कि मैं इसके लायक बनूं। उनका कद, उनका स्टैचर, वो सिर्फ उनके बॉक्स ऑफिस नंबर से नहीं बना, वो बना है इस बात से कि उन्होंने अपने काम को कभी अपना हक नहीं समझा। एंड जब बात कद की हो रही है, तो नंबर 11 पर तो है अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल का ये एनर्जेटिक चार्ट बस्टर ऊंचा लंबा कद, बट शाहरुख खान एनर्जी इज अनपैरेलल्ड, और उसका सिर्फ एक ही सबूत है मेरे पास, ट्रेन के ऊपर कोई ऐसे कैसे नाच सकता है, अलोंग विद मलाइका अरोरा खान, ये गाना है आइकॉन।

0: प्रवीण के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी। वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है। मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपने

0: कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए एट मिर्ची जीतु राज। समझे कि नहीं समझे? सही है
1: साथ जीतु राज। Only on Mirchi, it's hot.
2: Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 10.

मिर्जापुर को पहले सिनेमा हॉल की जरूरत नहीं थी, उसने अपना एम्पायर लोगों के लिविंग रूम्स में बनाया था। लेकिन जब वही दुनिया थिएटर में पहुंची तो ऑडियंस ने बिना किसी हिचकिचाहट के टिकट काउंटर पर लाइन लगा दी। इंडियन एंटरटेनमेंट में पहले सिनेमा से एक्टर्स टीवी पे जाते थे और फिर ओटीटी पर, लेकिन मिर्जापुर ने फ्लो ही उल्टा कर दिया। डिजिटल स्क्रीन्स पर जन्म लेने वाली दुनिया ने मल्टीप्लेक्सेस को ही कैप्चर कर लिया, क्योंकि कालीन भैया और गुड्डू पंडित अब कैरेक्टर्स नहीं रहे, ऑडियंस का पर्सनल रिलेशनशिप बन चुकी है। ये सिर्फ हमें बताता है कि आने वाले वक्त में सिनेमा का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि फिल्म का बजट कितना है, सवाल ये होगा इस दुनिया के फैंस कितने कमिटेड हैं। जैसे आवारापन के फैंस कितने कमिटेड थे कि इमरान हाशमी को फिर से अपने सर आंखों पर बिठा लिया, एंड एक ऐसी ही बिल्कुल नई स्टाइलिश दुनिया से इसके बाद वाला गाना है विच इज ऑन नंबर 8 अमित त्रिवेदी की म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर वाली डबल एनर्जी। दिस इज फ्रॉम कुणाल खेमू की आने वाली फिल्म वाइब, रातों में आना। नंबर

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 7।

0: बिग बजट स्पेक्टिकल फिल्म्स और इमोशनल ह्यूमन सिनेमा में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। स्पेक्टिकल फिल्म्स के पास स्केल होता है, वीएफएक्स होता है, लेकिन इमोशनल सिनेमा के पास ऑडियंस की मेमोरी की करेंसी होती है। आवारा पंटू के साथ वही इमोशनल करेंसी जुड़ी हुई है। और इस फिल्म के म्यूजिक के पीछे दो भाइयों की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, अमाल एंड अरमान मलिक। जब ये आवारापन कंपोज हो रहा था तब सबको लगा होगा कि अमाल ये गाना अपने भाई अरमान से गवाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल दोनों भाई हिंदी फिल्म म्यूजिक से काफी टाइम से दूर थे। लेकिन अमाल ने अरमान को नहीं चुना, उन्होंने अरिजीत सिंह को चुना, और इसके पीछे भी एक काफी सॉलिड रीजन है।
1: अगर मेरे को पता है कि ये गाना अरमान भी गा सकता है या उन दोनों के अलावा मैं भी गा सकता हूँ, बट सबको एक चॉइस होनी चाहिए। मैं अरमान को भी 5-6 गाने भेजता हूँ, मैं उसको फोर्स नहीं करता कि हर गाना गाते। There have been songs like चल वहां जाते and सोच ना सके जो अरमान ने गाए, एंड उसको हटा के हमने अरिजीत को लिया है। Then there is a bass abriya from MS Dhoni जो अरिजीत ने गाया है, वो हट के अरमान ने बाद में गाया। So these are creative calls, और मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है मेरे सिंगर्स के साथ कि मैं सबको इन्फॉर्म्ड भी रखता हूँ कि ये गाना शायद ये सिंगर से भी हम ट्राई करेंगे।
0: ये एक सच्चे म्यूजिशियन की पहचान है, अपने भाई से प्यार करना एक बात है, लेकिन गाने की आत्मा के साथ ऑनेस्टी दिखाना दूसरी बात। अमाल ने भाई से ज्यादा गाने की सुनी, और इस गाने की किस्मत देखिए, अरिजीत ने इस गाने के लिए अपनी टेम्पररी सिंगिंग रिटायरमेंट को तोड़ दिया, और अमाल ने इस ट्रैक के बाद म्यूजिक से पॉज ले लिया। दोनों थक कर रुक गए, लेकिन गाना आगे निकल गया। उन लोगों के लिए जिन्होंने इमरान हाशमी के गानों को सिर्फ सुना नहीं है, अपनी जवानी में जिया है, एट नंबर 5 इज ये आवारापन। नंबर 5 मेरे

0: Surain ke saath. Only on Mirchi. It's hot. Mirchi.
1: हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ नहीं हो पाया
2: सर. वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है. वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार रोज गए तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया है. क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई.
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है. मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ. मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे. आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: गुस्सा ना करूँ. नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा सर
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें.
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में. बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए गुस्सा खत्म करिए.
1: कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ये पगला
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट नंबर 4.

0: इतने हफ्तों से गहरा हुआ का नंबर 3 पर बने रहना इस बात का प्रमाण है कि धुरंधर ने रणवीर सिंह के करियर को दो हिस्सों में बांट दिया है, बिफोर धुरंधर एंड आफ्टर धुरंधर। और रणवीर की इस जर्नी को देखकर मुझे 2011 का रणबीर कपूर याद आता है। रॉकस्टार से पहले रणबीर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग स्टार थे, लेकिन इम्तियाज अली की उस फिल्म ने रणबीर के अंदर की सारी बेड़ियां तोड़ दी। नाउ मजेदार बात यह है कि इम्तियाज अली ने जब रॉकस्टार लिखी थी, ओरिजिनली उनके दिमाग में रणबीर थे ही नहीं।
1: रणबीर कपूर को फिल्म में लेने का कोई सवाल नहीं उठता था जब मैंने रॉकस्टार लिखी थी। पहले मैं जॉन इब्राहिम के साथ वो फिल्म बनाने वाला था। एक्चुअली जब मैंने मूवी लिखी, रणबीर कपूर एक्टिंग नहीं कर रहे थे। सोचा ना था कि बनने में 4 साल लग गए थे, और उसमें मुझे अपने आप को पागलपन से बचाने के लिए कुछ रेलेवेंट काम करना बहुत जरूरी था। तो इस चक्कर में मैं स्क्रिप्ट्स लिखा करता था, उसमें से एक स्क्रिप्ट थी रॉकस्टार। मेट रणबीर अ कपल ऑफ टाइम्स, फिर हम लोग दोनों ने फैसला किया कि हम कुछ साथ में बनाएं। उसके बाद फिर मैं उनके घर गया एक कहानी सुनाने के लिए, तो उसने कहा कि अच्छा आपकी मैंने एक कहानी सुनी है, तो उस कहानी में एक रॉकस्टार होता है। फिर उसने मुझे नरेट किया, दिस इज अ यूनिक नरेशन वेयर आई वेंट टू मीट एन एक्टर एंड द एक्टर नरेटेड द स्टोरी टू मी।
0: जॉन इब्राहिम से शुरू हुई स्क्रिप्ट जब 24 साल के रणबीर तक पहुंची तो एक डायरेक्टर को अपना जॉर्डन मिल गया। जॉर्डन को हीरो नहीं था वैसे, वो गुस्से, वल्नरेबिलिटी और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक तूफान था। रणबीर ने जॉर्डन को एक्टिंग से नहीं अपनी रगों से जिया था। उस फिल्म के बाद इंडस्ट्री ने रणबीर से पूछना बंद कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, और देखना शुरू कर दिया कि आप कितना दूर जा सकते हो। टुडेस पिक ऑफ द वीक इज द ट्रैक दैट चेंज रणबीर्स डेस्टिनी फॉरएवर फ्रॉम रॉकस्टार। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स बाय मोहित चौहान एंड एआर रहमान एंड इरशाद कामिल। इस गाने का नाम है जस्ट लाइक द फिल्म। जो भी मैं कहना चाहूं, पर बात करें अल्फाज मेरे।
2: Pick of the week.

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
3: Number 2.

नंबर दो पर चुनरी चुनरी का चढ़ना एक मैडनेस है यार। रिलीज के इतने महीनों बाद भी ये गाना रुकने को तैयार ही नहीं है। लेकिन नंबर वन पर जो गाना बैठा हुआ है काफी कंफर्टेबली, उसके साथ मेरा एक बहुत पर्सनल कनेक्शन है। मैं कोई क्लासिकल म्यूजिशियन नहीं हूँ, मुझे म्यूजिक की टेक्निकलिटी समझ नहीं आती है, कंपोजिशन के अंदर क्या क्या जाता है आई डोंट नो। लेकिन हाल ही में मैंने तेरा मेरा रिश्ता का एक अलग ही वर्जन सुन लिया, एक सूफी कव्वाली वर्जन, नियाजी निजामी भाइयों की आवाज में।

फिल्म का ओरिजिनल वर्जन एक अकेले टूटे हुए आदमी की खामोश दुआ है, जैसे रात के सन्नाटे में कोई खुदा से अकेले में कुछ पूछ रहा हो। लेकिन कव्वाली वर्जन में वही दर्द एक महफिल का हिस्सा बन जाता है। हारमोनियम की गहरी सुरीली पत्ती के ऊपर जब तालियां और कोरस जुड़ता है तो लगता है जैसे एक इंसान की तन्हा पुकार को पूरी महफिल ने अपनी आवाज दे दी हो। सिंगल वॉइस अंदर खींचती है, कव्वाली उस दर्द को बांट लेती है, और शायद यही पहचान होती है ऑफ दीज ग्रेट सॉन्ग्स। सिंगर्स बदल जाए, अरेंजमेंट बदल जाए, जमाना बदल जाए, लेकिन जज्बात वो कभी नहीं बदलते। 19 साल बाद भी ये गाना किसी एक फिल्म का नहीं, हर टूटे और जुड़े दिल का है। Still reigning at number one, this is तेरा मेरा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो है 19 साल पुराना।

0: कुछ गाने चार्ट से निकल जाते हैं लेकिन हमारी मेमोरी से कभी नहीं निकलते, इसलिए हम बार बार उनके पास खींचे चले आते हैं, हर बार अपने अंदर का एक नया पन्ना पढ़ने के लिए। अगर इस बार के मिर्ची टॉप 20 में आपको अपनी कोई पुरानी याद, कोई अधूरी बात या कोई नया एहसास मिला हो तो समझ लेना कि हमारा सफर पूरा हो गया है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम आई मीट यू हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, दिस इज सरेन, ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई बजा

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगता
2: नहीं
1: है?
2: वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। अच्छा चारू, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा यार रिक्शा
2: मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: लसा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker
1: heartbeat

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी
2: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो खींचे बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लगाया नहीं
2: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
1: नहीं।
2: मैं कल को
1: फोटो खींचे।
2: अरे लेंस ऐसे
1: पूरे कपड़े
2: कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से, सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
1: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
2: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
1: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसको, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए।
2: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
1: कहाँ होता है बताइए?
3: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: कुड़िए ने मेरे दिल विच वस जा, कुड़िए ने तेरे बिन मैं नहीं जचदा।

0: चम चम चम।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो मुकेश जी.
2: कौन
3: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
2: नहीं हो पाया भाई.
3: हाँ, वो नहीं हो पाया सर.
2: हाँ, नहीं हो पाया
3: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
2: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
3: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
2: क्या समझ रहे हो भाई.
3: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
2: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
3: सर? वो
2: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
3: नहीं सर,
2: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
3: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
2: क्यों नहीं हो पाया
3: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
2: है
3: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
2: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
3: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
2: क्या करा दू
3: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
2: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
3: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
2: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी.
3: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया.
2: उसमें
3: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
2: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
3: अच्छा सर,
2: मुझे चाहिए अपनी वापस.
3: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
2: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
3: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
4: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
2: तो जान निकाल दी हमारी.
4: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप पे, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
2: कुकड़ू कू.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तो हका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर, आए एट मिर्ची जीतूराज, समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगा?
2: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। अच्छा, चारू फोन मत रखना। हेलो, चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू, बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा
2: यार, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखो, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. La bala. Burka, burka. La vieja la burka. Mirchi, burka.
1: हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन?
2: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना उसका हाँ वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ नहीं हो पाया
2: सर. वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है. वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार रोज के तुम्हें जब भी गाड़ी पे नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया है. क्या मजाक ही क्या है ये.
2: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई.
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर. वो
1: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है. मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर
1: एक्चुअली आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर. वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या.
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ. मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर. मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की.
1: कैसी FIR दिमाग खराब हो गया तेरा. पागल तो नहीं है तू.
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे. आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: मैं गुस्सा ना करूं. नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया. उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
1: ग्रीस कितने का. 5 रुपए का लगा. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा सर
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें.
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें. हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें. और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ. मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप पे. बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए. गुस्सा खत्म करिए.
1: कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है। मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखो, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट काउंटडाउन ऑफ द वीक यानी गाना इंडी टॉप 10 जहां पर हम हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती आपके लिए करते हैं। इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है। काउंटडाउन के साथ साथ हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप क्लासिक आपके लिए लाएंगे। सम स्पेशल शाउट आउट्स आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें ऑल दिस एंड मोर एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके स्टे कनेक्टेड विद मी। कोई गाना रेकमेंड करना है, कोई बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। शुरुआत ही एक नई एंट्री के साथ हो रही है। गाने का नाम है वो आएगा, ऑपरेशन सफेद सागर का है ये गाना। अनुराग साइकिया की कॉम्पोजिशन, राजशेखर के लिरिक्स, राघव चैतन्य की आवाज में वो आएगा डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 10

0: सारे कूल इंटरनेट स्लैंग्स आपको संजू राठौड़ के गाने में मिल जाएंगे. भले ही आपको मराठी समझ आए ना आए, बैंगल्स पे यू विल ग्रूव. दैट्स द मैजिक ऑफ संजू एंड हिज प्रोड्यूसर जी स्पार्क. 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. दिस वाज बैंगल्स ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. असली कहानियों से गाने बनते हैं, गानों से असली कहानियां इंस्पायर होती हैं. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो ऐसे ही एक कश्मकश में लाके खड़ा कर देता है. एक चिड़िया के बारे में सोचो जो एक पिंजरे में बंद है. वो जब से इस पिंजरे में है, वो चाहती है कि वो इस पिंजरे को तोड़ के बाहर निकल जाए आसमान में, उस आसमान में जहां वो बिलोंग करती है. और उसी आसमान से उसे डर भी लगता है. नाउ अब कंफ्यूज मत हो कि ऐसा कैसे कि वो आसमान में जाना चाहती है लेकिन फिर भी उसे डर लगता है. रियलिटी तब हिट करती है व्हेन वी रियलाइज दैट ये बात तो सिर्फ परिंदे की है ही नहीं, ये तो मेरी आपकी भी बात है. हम सबके अंदर कहीं ना कहीं अंदर एक छोटी दबी हुई विश है, राइट? एक चुल होगी या कोई आर्टिस्ट है हमारे अंदर छुपा हुआ. कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर एक फिल्म की कहानी है, एक पेंटिंग है, या मे बी आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है. और हमने क्या किया, उन सब विशेस को लेके एक अलमारी के अंदर बंद कर दिया. बोला कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी पहले इस पे फोकस कर लेते हैं, जिंदगी बना लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, कॉलेज पूरा कर लेते हैं. और वो जो हमारे अंदर की इच्छा थी, वो क्रिएटिव विश, वो रोज करते करते थोड़ी थोड़ी मर गई. नाउ जस्ट इमेजिन एक दिन यूनिवर्स आपकी वो सारी विशेस मान ले. कल सुबह आपको परमिशन मिल गई कि आप जो करना चाहते हो जाएगा. आसमान खुला आपके सामने है, आप क्या करोगे? ये जवाब मुझे मत दो, खुद सोचो कि क्या आप वो कदम ले लोगे या फिर उल्टी होके अलमारी में बैठ जाओगे. क्योंकि जो कंफर्टेबल दुनिया हमने बना ली है, इसकी अब आदत हो गई है. ये सर्कमस्टेंसेस ही बस रियल लगने लगते हैं कि क्या हमें ये पिंजरा इतना अच्छा लगने लग गया कि वो कदम बाहर निकालना कैसे है, अब हमें उससे ही डर लगता है. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो बिल्कुल इसी कश्मकश के बीच में है. लखनऊ के आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का नाम है फरक. उन्होंने ही एक गाना लिखा है, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है. आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पे ये गाना जरूर सुना होगा, लेकिन अब इस मतलब के साथ सुनना. गाने का नाम है तारे. 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप होके तारे बाय फरक इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बकवा दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो खींचे बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है? अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो है सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या? ये
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब?
0: नहीं,
1: मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे कपड़े
1: कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
1: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रोशन है मेरी।
1: बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना 3 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप मार के बरसात इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है, कोई गाना रिकमेंड करना है, बातें करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। कुछ गाने हमें हैप्पी फील कराते हैं, कुछ सैड फील कराते हैं, कुछ ट्रैवल करने की चुल जगा देते हैं, एंड कुछ गाने प्योरली हमको एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप पे लेके चले जाते हैं। एंड अगले वाला गाना इज ऑल अबाउट दैट नॉस्टैल्जिया। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

उड़ गई है बाय अ बैंड ऑफ बॉयज. साल 2002 में ये गाना आया था उनकी एल्बम ये भी वो भी से. आज सुबह जब मैं शो की तैयारी कर रही थी तो ये गाना सुन रही थी. आई वॉन्टेड टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू बिकॉज बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है. एंड मेरा एक दोस्त साइड में बैठा हुआ था, वो अपना काम कर रहा था एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था. एकदम बीच में उठता है एंड बोलता है कि यार ये गाना सुनते ही ना मेरा एकदम स्ट्रेस चला गया, एनर्जी आ गई मेरे अंदर. एंड आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई, व्हाट मेड यू फील लाइक दिस, एंड ही सेड बस नॉस्टैल्जिक लगा. And I exactly understood वो क्या कहना चाह रहा था. ये गाना उसको एक simpler times में लेके चला गया. 2002 का वो वक्त जब प्यार होना, crush होना, किसी को अपनी feelings confess करना बहुत ही simple था. कोई scene नहीं था, कोई blue tick का pressure नहीं था. ये नहीं था कि यार ये मुझे reply तो कर नहीं रहा है या reply तो कर नहीं रहा लेकिन Instagram पे story डाल रही है. बस किसी का ख्याल है, एक तरफा दिमाग में imaginations चल रही हैं, उतना ही है और वही काफी था. एंड इस गाने में पूरी वही वाली फीलिंग्स हैं. मेरी नींद उड़ गई, मेरा होश खो गया. दैट्स एग्जैक्टली हाउ अ क्रश मेक्स यू फील. एंड अगर आप किसी के क्रश हो देन दिस इज लाइक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. साल 2002 का गाना है बट इट साउंड्स लाइक फ्रेश फ्रॉम द ओवन. वो लेस्ली लुईस की खासियत है, अ बैंड ऑफ बॉयज का गाना. दिस इज मेरी नींद उड़ गई है ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक ओनली ऑन गाना एडिट ऑफ डेट. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

Dude, this song is like a time capsule. I swear it takes me back to the simpler times. Gaane ka naam hai Meri Neend Ud Gayi Hai by A Band of Boys. That was on our cassette classic this week. At RJ Kanek on Instagram par aao. Main aur mera producer Ashkai, hum aapke cassette classic ke recommendations ko bahut seriously lete hain. We might feature your song next week. Now quickly is indie pop quiz ka answer karo. A Band of Boys ka ek gaana hai. मैं पहली लाइन गा रही हूँ, दूसरी लाइन आपको मुझे एट आरजे कनेगा और इंस्टाग्राम पर आके बतानी है क्या है. तेरे नैन कटारी मेरी राम डैश एट आरजे कनेगा पर आके मुझे बताओ. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट्स अटली बटली ब्यूटिफुली रोमांटिक सॉन्ग. राघव कौशिक रेखा भारद्वाज की आवाज, अमृता सलूजा के लिरिक्स, राघव कौशिक का म्यूजिक. इट्स फ्रॉम मुसाफिर कैफे. गाने का नाम है दरमिया. पिछले हफ्ते से 5 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद बादशाह हितेन शर्वी यादव का बैंगर इज ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स सुनी के कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है साड़ी सुन। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर स्टे कनेक्टेड विद मी। दिस इज द शो जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। यू नो, एक टाइम था जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक को पसंद करना मतलब इंडी पॉप बैंड्स के फैन थे। बहुत सिंपल थी ये बात। एक बैंड कल्चर था जो इस अल्टरनेटिव म्यूजिक का पिलर था। फ्रॉम यूफोरिया टू सिल्क रूट टू इंडियन ओशन, लेट 80s एंड अर्ली 90s में इंडिपेंडेंट म्यूजिक ने हमें बहुत सारे बैंड्स दिए। एंड दीज बैंड्स हैव बीन इंस्पिरेशन टू सो मेनी म्यूजिशियंस। कॉलेज में, स्कूल में अगर आपके अंदर एक आर्टिस्ट था, एक म्यूजिशियन था, तो आपको अपने दोस्तों के साथ बस एक बैंड शुरू करना था। एंड आज कंटेम्प्रेरी स्पेस में वी हैव गॉट येलो डायरीज, लोकल ट्रेन एक बैंड था व्हिच वाज सो पॉपुलर, कॉलेज फेस्ट फेवरेट थे वो लोग। इन्हीं सारे बैंड्स के बीच में एक और बैंड है जो मे बी आप उनका म्यूजिक मिस कर चुके हो, पर जब आप उनके गाने सुनोगे दे विल बी ऑन योर मैप। बैंड का नाम है लास्ट मिनट इंडिया और ये फोक रॉक म्यूजिक बनाते हैं। ये एक्चुअली कॉलेज में साथ थे, दोस्त हैं जिन्होंने साथ में बैंड बनाया। एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन में रजिस्टर करने जा रहे थे एंड इनके पास अपने बैंड का कोई नाम ही नहीं था, बट दे हैड टू रजिस्टर एंड इट वाज लास्ट मिनट। उन्होंने सोचा कि क्या नाम रखें इतने लास्ट मिनट में, एंड यस दैट्स हाउ दे स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्फ लास्ट मिनट इंडिया। एंड ये किसी ओवरनाइट रील से या एक वायरल गाने से पॉपुलर नहीं हुए। कॉलेज टू कॉलेज, लाइव परफॉर्मेंस टू लाइव परफॉर्मेंस, धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स जीतकर हर शो से अपनी ऑडियंस को बनाकर मुंबई के ये 5 लड़के आज भी फोक रॉक में म्यूजिक बना रहे हैं। They've got a new song जिसका नाम है उड़ चले। I'm going to play this song for you, but the best thing about this song is that अगर आप इसकी वीडियोस देखने लगोगे आपको रियलाइज होगा कि इतने सारे कॉलेज शोज में लास्ट मिनट इंडिया ने इस गाने को टीज किया था एंड अब ये गाना ऑफिशियली रिलीज हो गया है एंड इंटरनेट पे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, यार ये गाना हमने लाइव सुना था। इट्स दैट परफेक्ट पॉप रॉक सॉन्ग जिसमें मेलेडी भी है, म्यूजिक भी है, इमोशन भी है एंड देयर इज अग्रेशन एज वेल। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। दिस इज उड़ चले बाय लास्ट मिनट इंडिया, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

That was Ur Chale by Last Minute India on our Gaana Spotlight of the Week at RJ Kane ka Instagram par aao and quickly is indie pop quiz ka answer karo. Palash Sen, a very popular independent musician, wo kis independent band ka part hai? Unke band ka naam aake mujhe batao. Palash Sen ke band ka naam kya hai? At RJ Kane ka on Instagram par jaldi jaldi aake batao. Back to the countdown, agle wale gaane ki bari, Banjare the artist ka gaana 24 hafton se is countdown par barkarar. उन्हीं के लिरिक्स उन्हीं की कॉम्पोजिशन गाने का नाम है बैरन इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3 यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है कनिका एंजॉय नंबर 3

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: पर। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस इज द शो विच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स, कुछ ऐसे भी गाने होते हैं विच डिजर्व अ स्पेशल शाउट आउट। ऐसे गाने के बारे में बात करने वाली हूँ। इट्स कॉल्ड गाने का नाम है बूम शाकलाका। एंड आई एम श्योर ये गाना, ये फ्रेज आपने जरूर सुना है। गाने के फॉर्म में नहीं सुना है तो किसी को बोलते हुए सुना होगा, बिकॉज इट्स एवरीवेयर। ढांडा न्योली वाला एंड कृष्णा का ये गाना है। वैसे तो ये गाना अप्रैल में रिलीज हुआ था, पर धीरे धीरे धीरे कृष्णा के फैंस एंड ढांडा न्योली वाला के फैंस के ऊपर निकल चुका है ये गाना, हिप हॉप के आगे बढ़ चुका है एंड एक तरह के इसे पॉप कल्चर का पार्ट बन गया है। छोटे बच्चे इस गाने को गा रहे हैं, कॉलेज वाले इस पे रील्स बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई इंसान अभी गाड़ी चला रहा है जिसको हिप हॉप के बारे में कोई आइडिया नहीं है, और वो भी बूम शाकलाका गा रहा है। एंड दैट्स व्हेन यू नो दैट दिस सॉन्ग इज बिगर देन द आर्टिस्ट्स। कृष्णा को हिप हॉप सीन का एक सबसे टेक्निकल लिरिसिस्ट बोला जाता है, एंड इस गाने में भी वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। द वर्ड प्ले ऑफ द सॉन्ग इज द रीजन दैट यू कीप कमिंग बैक टू इट, बट द हीरो ऑफ दिस सॉन्ग फॉर मी इज ढांडा न्योली वाला। उन्होंने हरियाणवी म्यूजिक रैप को कूल बनाया। उनका असली नाम परवीन ढांडा है एंड इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक आर्टिस्ट ऑफ दिस सीन। हरियाणवी में अपने गाने लिखते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं

मैं किसी को बस एक पॉइंट प्रूफ कर रही हूँ दैट बूम शाकालाका इट्स लाइक आई हैव गॉट द लास्ट वर्ड ऑन दिस धंडा न्योली वाला कृष्णा का गाना दिस इज बूम शाकालाका अ स्पेशल शाउट आउट ऑन गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है आरजे कनेका एंजॉय

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची बायोस्कोप साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: Radio Mitri, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mitri. It's hot.
2: The show starts in...
3: कभी कभी इन चार्ट्स को एक सिंपल काउंटडाउन की तरह सुनना थोड़ा अनफेयर लगता है बिकॉज एवरी सॉन्ग ऑन दिस लिस्ट इज एक्चुअली अ टाइम मशीन. एक गाना आपको इस हफ्ते के बॉलीवुड में ले जाता है और अगला ही गाना बिना वार्निंग के 10 साल पीछे. कभी कोई पुरानी आवाज अचानक वापस आ जाती है, कभी एक नया सिंगर किसी पुराने एहसास को अपनी नई सांस दे देता है, और कभी एक ऐसा गाना जिसे हमने सोचा था कि हम भूल चुके हैं, पता चलता है वो तो बस दिल के किसी कोने में सो रहा था. शायद इसलिए बॉलीवुड को सिर्फ न्यू और ओल्ड में बांटना मुश्किल है. यहाँ पास्ट भी हर वीक नए सिरे से रिलीज होता है और फ्यूचर भी कभी किसी पुराने गाने की शक्ल में लौट आता है. और आज के मिर्ची टॉप 20 में वक्त थोड़ा ज्यादा ही उलझा हुआ है. कुछ आवाजें वापस आई हैं, कुछ पुराने रिश्ते वापस आए हैं, और कुछ गाने अपनी जगह से कई बड़े हो चुके हैं. तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते बॉलीवुड हमें किस जमाने में लेके जा रहा है. इट्स मी सुरेन, दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी आर स्टार्टिंग विद द गाना व्हिच इज ऑन नंबर 20, धुरंधर का आरी आरी.
4: नंबर 20.

0: सुपरस्टार होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? ऑडियंस जब आपकी एक इमेज बना लेती है तो उस इमेज के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। अक्षय कुमार ने अपने 35 साल के करियर में ये रिस्क बार बार लिया है। पहले एक्शन हीरो, देन रोमांटिक लीड, फिर कॉमेडी स्टार, उसके बाद पेट्रियोटिक फेस। उन्होंने खुद एक बार बताया था कि करियर के एक दौर में जब वो हर फिल्म में सिर्फ डिशुम डिशुम कर रहे थे, तो एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें एक अजीब सा डर लगा था।
1: एक दिन महसूस हुआ यार कि मैं सिर्फ एक बोरियत से आने लगी, और क्या मैं इसी के लिए बना हूँ कि सिर्फ एक्शन ही करना है मैंने, और कुछ नहीं करना, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। महसूस हुआ अपने अंदर ये गेन आने लगी यार कि मैं कुछ और भी तो कर सकता हूँ। बाकी सब एक्टरों को एक्टर बुलाते हैं, मुझे एक्शन बुलाते हैं, बस एक्शन का किंग कर लो, ये कर लो, इसको बुला लो, इसको स्टंट करवा लो, ये स्टंट मैन है। मैं यार करूंगा, आई थॉट इन माई माइंड आई हैव टू change myself. I have to take a risk.
0: अक्षय ने अपने चेहरे में एक इमेज की जेल को देखा। आज हैवान में अक्षय कुमार एक डार्क सीरियल किलर के रूप में उस इमेज से एक बार फिर भाग रहे हैं। और इसी डार्क वर्ल्ड के बीच प्रीतम नाय ने एक बहुत ही मेलोडिक कॉन्ट्रास्ट दिया है शान और सुखविंदर सिंह की आवाज में। मूवी में सैफ अली खान पर पिक्चराइज्ड ये गाना एक पुराने दौर के सुकून को लौटा कर लाता है। नंबर 18 पर डेब्यूइंग दिस वीक, दिस इज रंगी आरा फ्रॉम हैवान।
2: नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: मिल गया
4: मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद आया आपका?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
4: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल
4: लग रहा है? नहीं, मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
4: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना
2: मेरी
3: बात है। अच्छा चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता
2: हूँ।
3: चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 70।

नंबर 17 पर है कहो तो फ्रॉम प्रेम कीटानो, अरमान मलिक की आवाज में। और अरमान को सुनते ही एक ईरा वापस आ जाता है जहन में, जब उनकी आवाज बॉलीवुड रोमांस की एक डिफॉल्ट सेटिंग हुआ करती थी। लेकिन आवाजों का सफर बहुत ही अजीब होता है। नंबर 16 पर है कॉकटेल 2 का माशूका, और कॉकटेल का नाम सुनते ही सीधा 2012 याद आ जाता है, जब इस फ्रेंचाइज ने एक बिल्कुल नए साउंड को इंट्रोड्यूस किया था। ये नेहा कक्कड़ की शुरुआत थी, और फिर 2015 से 2021 के बीच बॉलीवुड में एक ऐसा फेज आया जब नेहा की आवाज से बचना इम्पॉसिबल था। काला चश्मा, दिल पर, कर्मी, वेडिंग हो, पार्टी हो या क्लब एंथम, नेहा वाज एवरीवेयर। लेकिन इस कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल सच पता है क्या है? बॉलीवुड ने नेहा कक्कड़ को कभी ऑफिशियली रिटायर नहीं किया। नेहा ने 2021 के बाद, गर्मी के बाद कई गाने गाए, लेकिन गर्मी वो आखिरी गाना था जिस लेवल पर कल्चरल सैचुरेशन पहुंच गई थी, जहां गाना आने से पहले ही लगता था ये तो नेहा का जमाना है।

एंड देन इंडस्ट्री का टेस्ट बदल गया, नए सिंगर्स आए, नया साउंड आया। और सच ये है कि ये इंडस्ट्री किसी आर्टिस्ट को तब तक ही सर पर बिठाती है जब तक वो करंट ट्रेंड की जरूरत है। तो आज जब नेहा के पुराने हिट चलते हैं तो नोस्टैल्जिया किसी एक सिंगर का नहीं है, एक पूरे बॉलीवुड ईरा का होता है। इसलिए आज मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट उस दौर के नाम जहां हर जगह गूंजता था नेहा कक्कड़ का नाम। Here is आँख मारे फ्रॉम सिम्बा। टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट गाना।

पिया बॉलीवुड का सबसे फेवरेट रोमांटिक वर्ड, लेकिन कभी सोचा है कि रोजमर्रा की जिंदगी डेली लाइफ में हम इस वर्ड को बिल्कुल नहीं यूज करते। रियल लाइफ में अगर आप किसी को पिया बोल दोगे ना तो वो शायद शर्मा जाए या फिर आप पर शक करने लगे, लेकिन हिंदी सिनेमा ने पिया को कभी रिटायर नहीं होने दिया। 90s में फाल्गुनी पाठक ने इसे पॉप कल्चर का रिदम बना दिया था। Then 2000s में राहत फतेह अली खान ने इसे सूफी पोएट्री का रूप दे दिया।

बॉयफ्रेंड वर्ड प्रैक्टिकल है, पार्टनर वर्ड कॉर्पोरेट लगता है और लवर वर्ड थोड़ा रिस्की है, लेकिन पिया में रोमांस के साथ एक अलग ही पोएट्री है। और आज इतने सालों बाद प्यार को शायद नाम से ज्यादा एक सवाल की जरूरत है, जब दिल चाहता है कि सामने वाला बिना कहे सब समझ जाए। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया की एक फिल्म आ रही है वन, लेकिन इसमें एक ऐसा गाना है विच ब्रिंग्स बैक द कोलैबोरेशन ऑफ सिद्धार्थ एंड जुबिन नौटियाल दैट गेव अस राता लंबिया इन शेरशाह एंड तुम ही आना इन मरजावा। इस बार दे ब्रिंगिंग अस अ गाना जहां फोकलोर और जज्बात मिलते हैं। नंबर 14 पर डेब्यू कर रहा है समझो ना फ्रॉम वन। नंबर 14।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नंबर 13। तू

0: कर।
1: नंबर 12 पर है साड़ी फ्रॉम धमाल फॉर, जहां लॉजिक को पॉकेट में रखकर बस मैडनेस एंजॉय करनी होती है। एंड बाय द वे दिस फिल्म इज नाउ ऑन OTT। लेकिन बॉलीवुड स्क्रीन पर पिछले कुछ वक्त में एक चीज बहुत स्ट्रॉन्गली फील हुई है। लार्ज स्केल रिलीजेस हुए, नए स्टार्स आए, लेकिन एक सुपरस्टार की फिजिकल एब्सेंस स्क्रीन पर बहुत भारी पड़ी, शाहरुख खान। 2023 में पठान, जवान और डंकी के बाद शाहरुख खान स्क्रीन से गायब हो गए, और तब रियलाइज होता है कि कुछ लोगों का ना होना भी कितना बड़ा इवेंट होता है। अब क्रिसमस पर किंग के साथ उनका वेट खत्म होने वाला है, लेकिन इतने बड़े स्टारडम के बाद शाहरुख खान खुद अपनी कामयाबी को कैसे देखते हैं?
2: मेरे को ना भगवान ने इतना दे दिया कि मेरी औकात से ज्यादा है। ये कोशिश करता रहता हूँ कि एट द एंड ऑफ माय लाइफ और करियर उतना काम कर जाऊँ कि मुझे लगे कि यार मैं डिजर्व करता था। मुझे बारी सरोज खान जी ने बोला था, एक बार मैं आया शूटिंग पे, तो तब हम 3 दिन शिफ्ट करते थे, तो मैं ऐसा आया, मैं यार थकिया, इतना काम है, मैं परेशान हो गया हूँ। उन्होंने से मुझे यहाँ पे थप्पड़ मारा ऐसा, क्योंकि बेटा एक बात याद रखना, एज एन आर्टिस्ट कभी ये मत कंप्लेन करना कि ज़्यादा काम, क्योंकि जब नहीं होता ना तो वो कंप्लेन बहुत बड़ी होती है। तो कभी मत कंप्लेन करना, बाकी हर चीज़ की कंप्लेन करो। सो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जितना हो जाए, जितना बन पड़े, और उससे भी ज्यादा कर सकूँ और खुशी से कर सकूँ।
1: शाहरुख खान ने यहाँ एक बहुत गहरी बात कही थी कि मुझे मेरी औकात से ज्यादा मिला है, अब कोशिश यही है कि मैं इसके लायक बनूं। उनका कद, उनका स्टैचर, वो सिर्फ उनके बॉक्स ऑफिस नंबर से नहीं बना, वो बना है इस बात से कि उन्होंने अपने काम को कभी अपना हक नहीं समझा। एंड जब बात कद की हो रही है, तो नंबर 11 पर तो है अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल का ये एनर्जेटिक चार्ट बस्टर, ऊंचा लंबा कद, बट शाहरुख खान एनर्जी इज अनपैरेलल्ड, और उसका सिर्फ एक ही सबूत है मेरे पास, ट्रेन के ऊपर कोई ऐसे कैसे नाच सकता है, अलोंग विद मलाइका अरोरा खान, ये गाना है आइकॉनिक, दिस वन इज छैया छैया फ्रॉम दिल से।
3: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो है ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जो धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: जीतूराज Only on Mirchi. It's hot.
0: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot. Number 10.

मिर्जापुर को पहले सिनेमा हॉल की जरूरत नहीं थी, उसने अपना एम्पायर लोगों के लिविंग रूम्स में बनाया था। लेकिन जब वही दुनिया थिएटर में पहुंची तो ऑडियंस ने बिना किसी हिचकिचाहट के टिकट काउंटर पर लाइन लगा दी। इंडियन एंटरटेनमेंट में पहले सिनेमा से एक्टर,

0: मल्टीप्लेक्सेस को ही कैप्चर कर लिया, क्योंकि कालीन भैया और गुड्डू पंडित अब कैरेक्टर्स नहीं रहे, ऑडियंस का पर्सनल रिलेशनशिप बन चुके हैं। ये सिर्फ हमें बताता है कि आने वाले वक्त में सिनेमा का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि फिल्म का बजट कितना है, सवाल ये होगा इस दुनिया के फैंस कितने कमिटेड हैं। जैसे आवारापन के फैंस कितने कमिटेड थे कि इमरान हाशमी को फिर से अपने सर आंखों पर बिठा लिया, एंड एक ऐसी ही बिल्कुल नई स्टाइलिश दुनिया से इसके बाद वाला गाना है विच इज ऑन नंबर 8, अमित त्रिवेदी की म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर वाली डबल एनर्जी। दिस इज फ्रॉम कुणाल खेमू की आने वाली फिल्म वाइब, रातों में आना।
1: नंबर

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 7.

0: बिग बजट स्पेक्टिकल फिल्म्स और इमोशनल ह्यूमन सिनेमा में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। स्पेक्टिकल फिल्म्स के पास स्केल होता है, वीएफएक्स होता है, लेकिन इमोशनल सिनेमा के पास ऑडियंस की मेमोरी की करेंसी होती है। आवारा पंटू के साथ वही इमोशनल करेंसी जुड़ी हुई है। और इस फिल्म के म्यूजिक के पीछे दो भाइयों की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, अमाल एंड अरमान मलिक। जब ये आवारापन कंपोज हो रहा था तब सबको लगा होगा कि अमाल ये गाना अपने भाई अरमान से गवाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल दोनों भाई हिंदी फिल्म म्यूजिक से काफी टाइम से दूर थे। लेकिन अमाल ने अरमान को नहीं चुना, उन्होंने अरिजीत सिंह को चुना, और इसके पीछे भी एक काफी सॉलिड रीजन है।
1: अगर मेरे को पता है कि ये गाना अरमान भी गा सकता है या उन दोनों के अलावा मैं भी गा सकता हूँ, बट सबको एक चॉइस होनी चाहिए। मैं अरमान को भी 5-6 गाने भेजता हूँ, उसमें उसको फोर्स नहीं करता कि हर गाना गाते। There have been songs like चल वहां जाते एंड सोच ना सके जो अरमान ने गाए, एंड उसको हटा के हमने अरिजीत को लिया है। Then there is a बेस अबरिया फ्रॉम MS धोनी जो अरिजीत ने गाया है, वो हट के अरमान ने बाद में गाया। So these are creative calls, और मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है मेरे सिंगर्स के साथ कि मैं सबको इन्फॉर्म्ड भी रखता हूँ कि ये गाना शायद ये सिंगर से भी हम ट्राई करेंगे।
0: ये एक सच्चे म्यूजिशियन की पहचान है। अपने भाई से प्यार करना एक बात है, लेकिन गाने की आत्मा के साथ ऑनेस्टी दिखाना दूसरी बात। अमाल ने भाई से ज्यादा गाने की सुनी, और इस गाने की किस्मत देखिए, अरिजीत ने इस गाने के लिए अपनी टेम्पररी सिंगिंग रिटायरमेंट को तोड़ दिया, और अमाल ने इस ट्रैक के बाद म्यूजिक से पॉज ले लिया। दोनों थक कर रुक गए, लेकिन गाना आगे निकल गया। उन लोगों के लिए जिन्होंने इमरान हाशमी के गानों को सिर्फ सुना नहीं है, अपनी जवानी में जिया है, एट नंबर 5 इज ये आवारापन। नंबर 5।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot. Mirchi. इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
1: Mirchi मुर्गा. हेलो
2: मुकेश जी.
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई?
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ, नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज के तुम्हारे जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ. वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई?
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर, मैं वही आपसे कह रहा हूँ. मतलब हम
1: क्या करा दू
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर, जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे. आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
3: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया, तुम्हारे साथ मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश, आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
1: कुकुरुकू
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on Mirchi. It's hot.
4: Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 4.

0: इतने हफ्तों से गहरा हुआ का नंबर 3 पर बने रहना इस बात का प्रमाण है कि धुरंधर ने रणवीर सिंह के करियर को दो हिस्सों में बांट दिया है, बिफोर धुरंधर एंड आफ्टर धुरंधर। और रणवीर की इस जर्नी को देखकर मुझे 2011 का रणबीर कपूर याद आता है। रॉकस्टार से पहले रणबीर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग स्टार थे, लेकिन इम्तियाज अली की उस फिल्म ने रणबीर के अंदर की सारी बेड़ियां तोड़ दी। नाउ मजेदार बात यह है कि इम्तियाज अली ने जब रॉकस्टार लिखी थी, ओरिजिनली उनके दिमाग में रणबीर थे ही नहीं।
1: रणबीर कपूर को फिल्म में लेने का कोई सवाल नहीं उठता था जब मैंने रॉकस्टार लिखी थी। पहले मैं जॉन इब्राहिम के साथ वो फिल्म बनाने वाला था। एक्चुअली जब मैंने मूवी लिखी, रणबीर कपूर एक्टिंग नहीं कर रहे थे। सोचा ना था कि बनने में 4 साल लग गए थे, और उसमें मुझे अपने आप को पागलपन से बचाने के लिए कुछ रेलेवेंट काम करना बहुत जरूरी था। तो इस चक्कर में मैं स्क्रिप्ट्स लिखा करता था, उसमें से एक स्क्रिप्ट थी रॉकस्टार। मेट रणबीर अ कपल ऑफ टाइम्स, फिर हम लोग दोनों ने फैसला किया कि हम कुछ साथ में बनाएंगे। उसके बाद फिर मैं उनके घर गया एक कहानी सुनाने के लिए, तो उसने कहा कि अच्छा आपकी मैंने एक कहानी सुनी है, तो उस कहानी में एक रॉकस्टार होता है। फिर उसने मुझे नरेट किया, दिस इज अ यूनिक नरेशन वेयर आई वेंट टू मीट एन एक्टर एंड द एक्टर नरेटेड द स्टोरी टू मी।
0: जॉन इब्राहिम से शुरू हुई स्क्रिप्ट जब 24 साल के रणबीर तक पहुंची तो एक डायरेक्टर को अपना जॉर्डन मिल गया। जॉर्डन को हीरो नहीं था वैसे, वो गुस्से, वल्नरेबिलिटी और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक तूफान था। रणबीर ने जॉर्डन को एक्टिंग से नहीं अपनी रगों से जिया था। उस फिल्म के बाद इंडस्ट्री ने रणबीर से पूछना बंद कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, और देखना शुरू कर दिया कि आप कितना दूर जा सकते हो। टुडेस पिक ऑफ द वीक इज द ट्रैक दैट चेंज्ड रणबीर्स डेस्टिनी फॉरएवर फ्रॉम रॉकस्टार। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स बाय मोहित चौहान एंड एआर रहमान एंड इरशाद कामिल। इस गाने का नाम है जस्ट लाइक द फिल्म। जो भी मैं कहना चाहूं, पर बात करें अल्फाज मेरे।
2: Pick of the week.

0: ब्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 2.

नंबर दो पर चुनरी चुनरी का चढ़ना एक मैडनेस है यार। रिलीज के इतने महीनों बाद भी ये गाना रुकने को तैयार ही नहीं है। लेकिन नंबर वन पर जो गाना बैठा हुआ है काफी कंफर्टेबली, उसके साथ मेरा एक बहुत पर्सनल कनेक्शन है। मैं कोई क्लासिकल म्यूजिशियन नहीं हूँ, मुझे म्यूजिक की टेक्निकलिटी समझ नहीं आती है, कंपोजिशन के अंदर क्या क्या जाता है आई डोंट नो। लेकिन हाल ही में मैंने तेरा मेरा रिश्ता का एक अलग ही वर्जन सुन लिया, एक सूफी का।

फिल्म का ओरिजिनल वर्जन एक अकेले टूटे हुए आदमी की खामोश दुआ है, जैसे रात के सन्नाटे में कोई खुदा से अकेले में कुछ पूछ रहा हो। लेकिन कव्वाली वर्जन में वही दर्द एक महफिल का हिस्सा बन जाता है। हारमोनियम की गहरी सुरीली पत्ती के ऊपर जब तालियां और कोरस जुड़ता है तो लगता है जैसे एक इंसान की तन्हा पुकार को पूरी महफिल ने अपनी आवाज दे दी हो। सिंगल वॉइस अंदर खींचती है, कव्वाली उस दर्द को बांट लेती है, और शायद यही पहचान होती है ऑफ दीज ग्रेट सॉन्ग्स। सिंगर्स बदल जाएं, अरेंजमेंट बदल जाए, जमाना बदल जाए, लेकिन जज्बात वो कभी नहीं बदलते। 19 साल बाद भी ये गाना किसी एक फिल्म का नहीं, हर टूटे और जुड़े दिल का है। स्टिल रेनिंग एट नंबर 1, दिस इज तेरा मेरा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो है 19 साल पुराना। नंबर 1।

कुछ गाने चार्ट से निकल जाते हैं लेकिन हमारी मेमोरी से कभी नहीं निकलते, इसलिए हम बार बार उनके पास खींचे चले आते हैं, हर बार अपने अंदर का एक नया पन्ना पढ़ने के लिए। अगर इस बार के मिर्ची टॉप 20 में आपको अपनी कोई पुरानी याद, कोई अधूरी बात या कोई नया एहसास मिला हो तो समझ लेना कि हमारा सफर पूरा हो गया है। So until the next time I meet you here on the Mirchi Top 20, this is Sareen, over and out. Sareen ke saath, only on Mirchi, it's hot.

0: out of 10.
1: क्यों नहीं चाहिए? चल
0: ओके देन. भरे कलब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल ली तू. कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी?